0: मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू पूर्वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस
2: सुनो जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो
3: ओ जो हुकम मेरी सरकार
2: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना तुसी आ किथे जा रहे हो
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे
3: आहो जी आहो
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच
4: हाय दिस इज आयुष्मान खुराना एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो हांजी

0: You are listening.
1: Haji Haji, Haji Haji, Haji Haji. Radio Haji.
2: Radio Haji. 1674 AM, 24/7 Indian Radio. Sydney ka apna Indian Radio Station.
1: Radio Haji.
0: Stay tuned.
3: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
5: Rhythm Boys Entertainment presents Bol Paave Na Bol।
6: Pyar nu sunan layi kanna di ni, dil di lod hundi।
5: Kuch gallan kehniyan nahi pendiyan, bas mehsoos karniyan pendiyan ne।
6: Eho gallan te main hune apni zuban vadd ke ho jana।
5: Is vaar gall sirf bolan di nahi, dil di sunan di hai।
7: Zindagi kive kattange, main nahi reh sakti ohde bina, mainu oh chahida।
5: Releasing worldwide 4th September, written and directed by Rakesh Tawan। Love, emotions ati relationships di kahani, Bol Paave Na Bol।

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानूं हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तों वेरबी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर सीधे आओ आईएमई एडवाइजर। अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नूं नाले वरियां तों स्किल वीजा 186 189 190 482 ते 491। स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा जां स्टूडेंट वीजा तों पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस लई एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर। कॉल 02-9063-1618 हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
3: Hi man, I'm Saiko Mirbai from Manipur. I'm a Commonwealth champion, gold medalist. Sunte rahiye radio Hanji.
4: Bale bale bale.
3: Bale bale bale.
4: Thank you.

0: जिप्पी म्यूजिक अते म्यूजिक टाइम प्रोडक्शंस पेश करते ने पंजाबी फिल्म जुदा अधूरे प्यार दी पूरी कहानी।
1: मेरी जिंदगी चोन वाली पहली कुड़ी भी तू आखरी भी तू।
0: गुलाब सिद्धू अते जैस्मीन पसीन दी अदाकारी वेखो गिल रौंता दी लिखी अते सिमरजीत सिंह वल्लों डायरेक्ट कीती पंजाबी फिल्म जुदा। रिलीज होवेगी 21 अगस्त नु।
2: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नु नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर कॉल 02-9063-1618 हुन पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
3: सत श्री अकाल जी, मैं थोड़ा अपना दिल पीटल, तुसीं सुन रहे हो रेडियो हाजी।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: कृष्णा जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलनगे।
1: आहो जी आहो।
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: जिप्पी म्यूजिक अते म्यूजिक टाइम प्रोडक्शंस पेश करदे ने पंजाबी फिल्म जुदा, अधूरे प्यार दी पूरी कहानी।
3: मेरी जिंदगी चोन वाली पहली कुड़ी भी तू ते आखरी भी तू।
2: गुलाब सिद्धू अते जैस्मीन पसीन दी अदाकारी, वेखो गिल रौंता दी लिखी अते सिमरजीत सिंह वल्लों डायरेक्ट कीती पंजाबी फिल्म जुदा। रिलीज होवेगी 21 अगस्त नू।
4: सतकाल, मैं हां जी शेर गिल, ते तुसी सुन रहे हो रेडियो हांजी 1674 AM।

0: एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बोल पावे ना बोल।
1: प्यार नु सुनन ली कन्ना दी नी दिल दी लोड़ हुंदी।
0: कुछ गल्लां कहनियां नहीं पैंदियां, बस महसूस करनियां पैंदियां नी।
1: एहो गल है ते मैं हुणे अपनी जुबान वट के हो जाणा।
0: इस वार गल सिर्फ बोलन दी नहीं, दिल दी सुनन दी है।
2: जिंदगी किवें कटांगी, मैं नहीं रह सकती ओदे बिना, मैनूं ओह चाहीदा।
0: रिलीजिंग वर्ल्ड वाइड 4 सितंबर, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय राकेश धवन। लव, इमोशंस अदे रिलेशनशिप्स दी कहानी, बोल पावे ना बोल।
3: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वल ले लो।
4: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
3: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
4: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
3: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
4: आहो जी आहो,
3: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स तंच विच वी तुहाडी सेवा विच।
5: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਰੇਡੀਓ।

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा
1: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431 465 186 ते 212216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस
2: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर सीधे आओ आईएमई एडवाइजर अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर कॉल 02906316 18 हुन पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर

0: हाँ भाई सिडनी वाले हो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी।
1: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर, सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जस्ट स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618। हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर। ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर, सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जस्ट स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618। हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
2: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर दा दे बंसल इमिग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
4: Zippy Music अते Music Time Productions पेश कर देने पंजाबी फिल्म जुदा, अधूरे प्यार दी पूरी कहानी।
5: मेरी जिंदगी चोन वाली पहली कुड़ी भी तू हां ते आखरी भी तू।
4: गुलाब सिद्धू अते जैस्मीन पसीन दी अदाकारी, वेखो गिल रौंता दी लिखी अते सिमरजीत सिंह वल्लों डायरेक्ट कीती पंजाबी फिल्म जुदा। रिलीज होवेगी 21 अगस्त नू।
6: कुछ गल्लां कहनिया नहीं पैंदियां, बस महसूस करनिया पैंदियां ने।
7: हाय नी, इन्ना सोहना मुंडा वी गूंगा है।
6: इस बार गल सिर्फ बोलन दी नहीं, दिल दी सुनन दी है।
8: मुंडे नू चाहिदी है सारी रात फोन ते गल्लां करन वाली कुड़ी, तू बोल नहीं सकदी, ओने नहीं होना तेरे पीछे।
6: लव, इमोशंस अते रिलेशनशिप्स दी कहानी। रिदम बॉयज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बोल पावे ना बोल, रिलीजिंग वर्ल्ड वाइड 4 सितंबर। रिटन एंड डायरेक्टेड बाय राकेश धवन।
9: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
10: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
9: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
10: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच।
9: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
10: आहो जी आहो,
9: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स टंच विच भी तुहाडी सेवा विच।

0: हाँ भाई सिडनी वालों, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी।
1: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर, सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस, आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618। हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर। ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर, सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस, आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618। हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
2: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा, जिन्ना ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर दा दे बंसल इमिग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो बंसल इमिग्रेशन .com.au।
4: Zippy Music अते Music Time Productions पेश करते ने पंजाबी फिल्म जुदा, अधूरे प्यार दी पूरी कहानी।
5: मेरी जिंदगी चोन वाली पहली कुड़ी भी तू, आखरी भी तू।
4: गुलाब सिद्धू अते जैस्मीन पसीन दी अदाकारी, वेखो गिल रौंता दी लिखी अते सिमरजीत सिंह वल्लों डायरेक्ट कीती पंजाबी फिल्म जुदा। रिलीज होवेगी 21 अगस्त नू।
6: कुछ गल्लां कहनियां नहीं पैंदियां, बस महसूस करनियां पैंदियां ने।
7: हाय नी, इन्ना सोहना मुंडा भी गूंगा है।
6: इस बार गल सिर्फ बोलन दी नहीं, दिल दी सुनन दी है।
8: मुंडे नू चाहिदी है सारी रात फोन ते गल्लां करन वाली कुड़ी, तू बोल नहीं सकदी, ओने नहीं होना तेरे पीछे।
6: लव इमोशंस अते रिलेशनशिप्स दी कहानी। रिदम बॉयज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बोल पावे ना बोल, रिलीजिंग वर्ल्ड वाइड 4 सितंबर। रिटन एंड डायरेक्टेड बाय राकेश धवन।
9: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
10: और जो हुकम मेरी सरकार।
9: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
10: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवरस्टंच।
9: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
10: आहो जी आहो,
9: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवरस्टन विच भी तुहाडी सेवा विच।

0: Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
1: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
2: और जो हुकम मेरी सरकार।
1: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
2: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
2: आहो जी आहो,
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स तंच विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: कुछ गल्लां कहनियां नहीं पैंदियां, बस महसूस करनियां पैंदियां ने।
4: हाय नी, इन्ना सोहना मुंडा वी गूंगा है।
3: इस बार गल सिर्फ बोलन दी नहीं, दिल दी सुनन दी है।
5: मुंडे नु चाहिदी है सारी रात फोन ते गल्लां करन वाली कुड़ी, तू बोल नहीं सकदी, ओने नहीं आना तेरे पीछे।
3: लव इमोशंस अदे रिलेशनशिप्स दी कहानी। रिदम बॉयज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बोल पावे ना बोल, रिलीजिंग वर्ल्ड वाइड 4 सितंबर। रिटन एंड डायरेक्टेड बाय राकेश धवन। ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला, ना जाओ इधर उधर, सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर। अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक, हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618। हुन पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
6: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
7: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
6: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
7: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
8: जिपी म्यूजिक अते म्यूजिक टाइम प्रोडक्शंस पेश करदे ने पंजाबी फिल्म जुदा, अधूरे प्यार दी पूरी कहानी।
9: मेरी जिंदगी चोन वाली पहली कुड़ी भी तू आ, आखरी भी तू।
8: गुलाब सिद्धू अते जैस्मीन पसीन दी अदाकारी, वेखो गिल रौंता दी लिखी अते सिमरजीत सिंह वालों डायरेक्ट कीती पंजाबी फिल्म जुदा। रिलीज होवेगी 21 अगस्त नू।

0: सिडनी वाले हो तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM रेडियो
1: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर कॉल 02-9063-1618 हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर
2: यार तू इतनी इनी छेती आके पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है
3: जुगाड़ नहीं ए है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई एना ही नहीं ए स्टूडेंट वीजा एएटी अपील्स स्किल्ड वीजा पीआर यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने
2: नंबर ता दे बंसल इमिग्रेशन वालियां दा
3: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au
4: Rhythm Boys Entertainment presents बोल पावे ना बोल
5: प्यार नु सुनन ली कन्ना दी नी दिल दी लोड़ हुंदी
4: कुछ गल्लां कहनियां नहीं पैंदियां बस महसूस करनियां पैंदियां ने
5: एहो गल्लां ते मैं हुणे अपनी जुबान वट के हो जाना
4: इस बार गल सिर्फ बोलन दी नहीं दिल दी सुनन दी है
6: जिंदगी किवें कटांगे मैं नहीं रह सकती ओदे बिना मैनू ओ चाहिदा
4: रिलीजिंग वर्ल्ड वाइड 4th September written and directed by Rakesh Dhawan love emotions adi relationships di kahani bol paave na bol

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
2: हांजी मैं तो अपना गैरी संधु सोन ड्राइवर का मुंडा पेंट रोड़का गला उस समय की गल कर लगा जो मैं कनेडा में पहली बार गया। मेरा फ्रेंड मैं कैक्टस क्लब लै गया। उसे मेरे वर्गा देसी बलैदन बीबी तो स्नैपचैट आई डी मंगता सी। मैं

0: एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बोल पावे ना बोल
1: प्यार नु सुनन ली कन्ना दी नी दिल दी लोड़ हुंदी
0: कुछ गल्लां कहनियां नहीं पैंदियां बस महसूस करनियां पैंदियां ने
1: एहो गलियां ते मैं हुणे अपनी जुबान वट के हो जाना
0: इस बार गल सिर्फ बोलन दी नहीं दिल दी सुनन दी है
2: जिंदगी किवें कटांगे मैं नहीं रह सकती ओदे बिना मैनू ओह चाहिदा
0: रिलीजिंग वर्ल्ड वाइड 4th सितंबर रिटन एंड डायरेक्टेड बाय राकेश धवन लव इमोशंस अदे रिलेशनशिप्स दी कहानी बोल पावे ना बोल
3: इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए ध्यान से इश्क कीजिए क्योंकि शादी नहीं हो सकती है सो दोस्तों मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हाँ जी 1674 AM हंसिए मस्त रहिए नाचते रहिए खुश रहिए

0: बात करके तो तसल्ली कर रहे हैं कि कहीं कोई सांस बाकी तो नहीं रही।
1: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
2: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
1: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
2: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
2: आहो जी आहो।
1: अक्षर ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी थोड़ी सेवा विच। हुन थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नु होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
3: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
1: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।
4: दिल तो हर किसी के पास होता है, लेकिन सब दिलवाले नहीं होते।
5: सत श्री अकाल टू ऑल द रेडियो हांजी लिसनर्स।

0: हाँ भाई सिडनी वालियो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी।
1: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर, सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर। अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जो स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618। हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
2: कुछ गल्लां कहनिया नहीं पैंदियां, बस महसूस करनिया पैंदियां ने।
3: हाय नी, इन्ना सोहना मुंडा वी गूंगा है।
2: इस बार गल सिर्फ बोलन दी नहीं, दिल दी सुनन दी है।
4: मुंडे नु चाहिदी है सारी रात फोन ते गल्लां करन वाली कुड़ी, तू बोल नहीं सकदी, ओने नहीं आना तेरे पीछे।
2: लव इमोशंस अदे रिलेशनशिप्स दी कहानी। रिदम बॉयज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बोल पावे ना बोल, रिलीजिंग वर्ल्ड वाइड 4 सितंबर। रिटन एंड डायरेक्टेड बाय

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हुन थोड़े मोड़े नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
3: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
2: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
4: कुछ गल्लां कहनियां नहीं पैंदियां, बस महसूस करनियां पैंदियां ने।
5: हाय नी, इन्ना सोहना मुंडा वी गूंगा है।
4: इस बार गल सिर्फ बोलन दी नहीं, दिल दी सुनन दी है।
5: मुंडे नु चाहिदी है सारी रात फोन ते गल्लां करन वाली कुड़ी, तू बोल नहीं सकदी, ओने नहीं होना तेरे पीछे।
4: लव इमोशंस अदे रिलेशनशिप्स दी कहानी। रिदम बॉयज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बोल पावे ना बोल, रिलीजिंग वर्ल्ड वाइड 4 सितंबर। रिटन एंड डायरेक्टेड बाय राकेश धवन।
6: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
7: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
6: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
7: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच।
6: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
7: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
8: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सिद्धे आओ IME एडवाइजर। अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू, नाले वरियां तो स्किल्ड वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा जां स्टूडेंट वीजा तो PR तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस लई एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो IME एडवाइजर, कॉल 0290631618। हुन पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी IME एडवाइजर।
9: जिप्पी म्यूजिक अते म्यूजिक टाइम प्रोडक्शंस पेश करते ने पंजाबी फिल्म जुदा, अधूरे प्यार दी पूरी कहानी।
10: मेरी जिंदगी चाउन वाली पहली कुड़ी भी तू आ ते आखरी भी तू।
9: गुलाब सिद्धू अते जैस्मीन पसीन दी अदाकारी, वेखो गिल रौंता दी लिखी अते सिमरजीत सिंह वल्लों डायरेक्ट कीती पंजाबी फिल्म जुदा। रिलीज होवेगी 21 अगस्त नू।
11: दिस स्टेशन इज नाउ द अल्टीमेट पावर इन द यूनिवर्स।
12: रेडियो हांजी 1674।
13: आई लव यू कहना ना, तीन बारी तेरा हाथ प्रेस करया करूं ते तू एक बारी हाथ प्रेस करके लव यू दा जवाब दिया करे। आई लव यू। जवाब
14: रुक जा, बाद च दसांगी।
13: ऊपर कथा
14: थोड़े दिन तक मगर घूम मेरे कुड़िया नु चंगा लगता।

12 बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

0: पूरे
1: दो नंबर दस चो
0: वही यार क्या ही क्यों ही करी जाने है क्या? चलो एनीवेज देवे जास्ता हुण प्रोग्राम ड्राइव बैक शो दे विचों ते एक गाना तो अडेली छड़ के जा रहे हैगे

0: यो हाँ जी 1674।
1: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो बंसल इमीग्रेशन
3: Toyota, the smart choice.
4: कुछ गल्लां कहनियां नहीं पैंदियां, बस महसूस करनियां पैंदियां ने।
5: हाय नी, इन्ना सोहना मुंडा वी गूंगा है।
4: इस बार गल सिर्फ बोलन दी नहीं, दिल दी सुनन दी है।
5: मुंडे नु चाहिदी है सारी रात फोन ते गल्लां करन वाली कुड़ी, तू बोल नहीं सकदी, ओने नहीं होना तेरे पीछे।
4: लव इमोशंस अदे रिलेशनशिप्स दी कहानी। रिदम बॉयज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बोल पावे ना बोल, रिलीजिंग वर्ल्ड वाइड 4 सितंबर। रिटन एंड डायरेक्टेड बाय राकेश धवन।
1: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वल ले लो।
6: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
1: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
6: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
6: आहो जी आहो,
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
7: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक, हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस, आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618 और पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
8: जिप्पी म्यूजिक अते म्यूजिक टाइम प्रोडक्शंस पेश करते ने पंजाबी फिल्म जुदा, अधूरे प्यार दी पूरी कहानी।
9: मेरी जिंदगी चोन वाली पहली कुड़ी भी तू, आखरी भी तू।
8: गुलाब सिद्धू अते जैस्मीन पसीन दी अदाकारी, वेखो गिल रौंता दी लिखी अते सिमरजीत सिंह वल्लों डायरेक्ट कीती पंजाबी फिल्म जुदा। रिलीज होवेगी 21 अगस्त नू।
10: दिस स्टेशन इज नाउ द अल्टीमेट पावर इन द यूनिवर्स।
0: रेडियो हांजी 16744।

0: सही जवाब
1: पूरा जवाब नहीं है। वाह क्या बात है क्या बात है। ओके आज दूरे पूरा कर दें फिर।
0: हाँ जी बिल्कुल ते जिदा मैं क्या ही है कि सारे मोस्टली इदे कहंदे और ये नवा नहीं चलिया कि हुण लोग कहण लगे आ ये बहुत सालां तों जदों दा एस्ट्रोनॉमी दे विच लोकां दा इंटरस्ट होया जां अपने आले दुआले च इंटरस्ट होया है ना काफी सालां तों अरिस्टोटल दे टाइम तों जां तों वी पहलां दे टाइम तों लैके हुण तक लोग यही कहंदे आए आ। तो मोस्टली लोगां नूं जदों पुछदे सी उहनां दा यही जवाब हुंदा सी कि नेरा हो जांदा है सूरज दूजे पासे चला जांदा इस लई सानूं सारा कुछ जिहड़ा दिखणा बंद हो जांदा। बट फिर ओबवियसली जदों ज्यादातर लोग यही सोचदे बचो कोई कोई होंगे जेडे कहते हैं कि नहीं ऐदा तो नहीं है इदा कि हो सकती है जब जे सन जो सन की असं गल करते हैं बेसिकली तो सू पता है कि साडा सन एक स्टार है ना
1: right.
0: और स्टार जड़े होंगे जो असं पॉडकास्ट किए एस्ट्रोनॉमी के गल की कि स्टार बहुत डिफरेंट डिफरेंट साइज के होंगे तो सन साडा ना तो बहुत वड्डा स्टार है ना ही बहुत छोटा स्टार है एक मॉडरेट साइज का स्टार है मॉडरेट जी एनर्जी हैगी है ना बाकी स्टार से कंपेरिजन तो बहुत छोटे स्टार भी है तो बहुत वे जो स्टार भी है सो हुण जदों सन सन एक अलग चीज है इट्स जस्ट अ स्टार है ना बाकी स्टार दे वांगू तो चलो रात दे टाइम ते चाहे सन जिहड़ा साडा दूजे पासे चले जांदा बट रात दे टाइम ते ही सानू स्टार्स भी दिखदे हैगे बाकी स्टार्स तो इन्ने ज्यादा जिहड़े साडे स्टार्स हैगे आ उहनां दी वी तां लाइट अपनी हैगी है ना फिर क्यों जिहड़ा सानू जिहड़ा आसमान जिहड़ा इह काला दिखाई दिंदा जां डार्क दिखाई दिंदा है ना तो इदां दे सवाल जिहड़े आ कुछ क लोग पुछदे सीगे उहनां च जिहड़ा काफी सी पर जिहड़ा मेन नाम चलदा ना उह किहदा कि जिहदा नाम चल जांदा है उह इक जर्मन साइंटिस्ट सीगा जिहदा नाम सीगा हेनरिक विलहेम ऑलबर्ग ते उहदे नाम तों ही इक ऑलबर्ग पैराडॉक्स करके जिहड़ी इक चीज कहिंदे जिहड़ी इसे चीज नूं कहिंदी उह उहदा मन्ना इही सी उह कहिंदा कि चलो ठीक है मैं मान लैंदा कि स्टार जिहड़ा सन जिहड़ा उह सैट हो गया बट उस तों बाद जिहड़े बाकी इन्ने सारे स्टार आ जिहदा सानूं पता ही है कि साडा यूनिवर्स जिहड़ा बहुत वड्डा हैगा ना इत्थे इन्ने ज्यादा स्टार है सो जिदा जिदा यूनिवर्स वड्डा हुंदा जांदा उदों दा स्टार्स भी इहदा मतलब नंबर भी ज्यादा ही वधदे जांदे आ है ना तो इन्ने सारे स्टार्स दा जिहड़े आ आसमान नूं पूरा ग्लो करा देना चाहीदा सीगा मतलब इन्ना सानूं वाइट मतलब एन चिट्टा जिहड़ा इक जिदा नहीं सन स्टार्स दी लाइट हुंदी उदां दा आसमान दिखना चाहीदा सीगा फिर भी सानूं क्यों डार्क जिहड़ा लगदा है। हालांकि जिहड़ी यूनिवर्स दी एक्सपेंशन दी गल है सानूं हुण पता है कि यूनिवर्स साडा वध रिहा है ना मतलब एक्सपैंड होई जा रहा है फैली जा रहा है उह सानूं जिहड़ा एडविन हबल नाम दा जिहड़ा साइंटिस्ट सी जिहने 1900 जिहड़ी फर्स्ट जिहड़ी 20th सेंचुरी दे शुरू दे विच जिहड़ी असीं 1920s दे विच उहने जिहड़ा उस डेकेड दे विच उहने सानूं दस्सिया सी कि उहने नोटिस कीता सी कि यूनिवर्स साडा एक्सपैंड हो रहा है तो उस टाइम के उत्ते जदों ये हेनरिक की मैं गल की जिन्हें 1823 दे विच ये जिहड़ा सवाल उन्हें चक्या कि अगर सन नहीं हैगा तो जिहड़े बाकी स्टार्स आ उहनां दी इन्नी लाइट कित्थे जा रही आ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਦਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਆਸਮਾਨ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਲਵੇਸ ਪੈਰਾਡੋਕਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੈਰਾਡੋਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਐਗਜਿਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਥੋਟ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਐਗਜਿਸਟਿੰਗ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਬਟ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਫਲੋਸ ਹੈਗੇ ਆ ਹਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਲੋ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੋਰ ਕਿ ਕਿਉਂ ਏਦਾਂ ਹੈਗਾ
1: ਰਾਈਟ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਡੋਕਸ ਦੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਬਟ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਨੌਰਦਰਨ ਹੈਮਿਸਫੇਅਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਾਨਣ ਹੋਏਗਾ ਸਦਰਨ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵਾਇਸਾ ਵਰਸਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਦੈਟ ਕੁੱਡ ਨੋਟ ਬੀ ਓਨਲੀ ਦੀ ਵਨ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ।
0: ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਓਲਬਰਗ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵਨ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਸਮਾਨ ਸਾਡਾ ਗਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਿਲੀਅਨ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਸਟਾਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਹਨਾ ਔਰ ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਂਡਰੋਮੀਡਾ ਗਲੈਕਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਲੋਜੈਸਟ ਗਲੈਕਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਚਲੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਐਸਟ੍ਰੋਨੋਮਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਔਰ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ 300 billion ਸਟਾਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੰਗੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਂਡਰੋਮੀਡਾ ਗਲੈਕਸੀ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਗਲੈਕਸੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਦੂਜੀ ਗਲੈਕਸੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਲੈਕਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: जिपी म्यूजिक अते म्यूजिक टाइम प्रोडक्शंस पेश करदे ने पंजाबी फिल्म जुदा, अधूरे प्यार दी पूरी कहानी।
3: मेरी जिंदगी चोन वाली पहली कुड़ी भी तू, आखरी भी तू।
2: गुलाब सिद्धू अते जैस्मीन पसीन दी अदाकारी, वेखो गिल रौंता दी लिखी अते सिमरजीत सिंह वल्लों डायरेक्ट कीती पंजाबी फिल्म जुदा। रिलीज होवेगी 21 अगस्त नू।
4: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला, ना जाओ इधर उधर, सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू। नाले वरियां तो स्किल्ड वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02906316 18 पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली। I am your advisor.

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक, हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस, आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618, हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
3: सत श्री अकाल जी, मैं तुहाडा अपना रविंदर गरेवाल, तुसी सुन रहे हो रेडियो हांजी

0: अवे सिडनी वालियों, तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM।
1: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर कॉल 02-9063-1618 हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
2: सुनो जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्सटंच
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटंच विच वी तुहाडी सेवा विच हुन थोड़े मोटे नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा
4: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल
2: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस। ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर कॉल 02-9063-1618 हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
1: कुछ गल्लां कहनियां नहीं पैंदियां बस महसूस करनियां पैंदियां ने।
5: हाय नी इन्ना सोहना मुंडा वी गूंगा है।
1: इस बार गल सिर्फ बोलन दी नहीं दिल दी सुनन दी है।
5: मुंडे नु चाहिदी है सारी रात फोन ते गल्लां करन वाली कुड़ी तू बोल नहीं सकदी ओने नहीं होना तेरे पीछे।
1: लव इमोशंस अदे रिलेशनशिप्स दी कहानी रिदम बॉयज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बोल पावे ना बोल रिलीजिंग वर्ल्ड वाइड 4 September रिटन एंड डायरेक्टेड बाय राकेश धवन।
6: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है?
7: जुगाड़ नहीं ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा जिन्ना ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं ए स्टूडेंट वीजा एएटी अपील्स स्किल्ड वीजा पीआर यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
6: नंबर ता दे बंसल इमिग्रेशन वालियां दा।
7: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
8: रेडियो हां जी 1674 AM दिस इज योर अपना आरजे पुनीत। समा हो चुका है आज दी कहानी आज दे विचार दा ते देखदे हां आज दी कहानी सानू की सिख्या देके जांदी है।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हाँ जी हाँ जी
1: रेडियो हाँ जी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
2: रेडियो हाँ जी 1674 AM
3: हुन थोड़ी मोडी नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नु होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउन दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
4: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानु हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
3: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा। The smart choice.
5: Rhythm Boys Entertainment presents Bol Paave Na Bol.
6: Pyar nu sunan layi kanna di nahi, dil di lod hundi.
5: Kuch gallan kehniyan nahi pendiyan, bas mehsoos karniyan pendiyan ne.
6: Eho gallan te main hune apni zuban vadd ke ho jaana.
5: Is vaar gall sirf bolan di nahi, dil di sunan di hai.
7: Sari zindagi kive kattange, main nahi reh sakti ohde bina, mainu oh chahida.
5: Releasing worldwide 4th September. Written and directed by Rakesh Tawan. Love, emotions, adi relationships di kahani. Bol Paave Na Bol.

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच,
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स टंच विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस, आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618। हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
3: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ। ਹਾਂਜੀ,

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्ना ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
4: ਫੁੱਲ ਘਾਰੀ ਉੱਤੇ ਬੇਲ ਬੂਟੀਆਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਚਾਦਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇ ਮੋਰੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਰੇਡੀਓ। ਹਾਂਜੀ
5: ਅੱਛਾ ਸੁਣਨਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਦੱਸੇਗਾ

0: जिप्पी म्यूजिक अते म्यूजिक टाइम प्रोडक्शंस पेश करते ने पंजाबी फिल्म जुदा अधूरे प्यार दी पूरी कहानी।
1: मेरी जिंदगी चोन वाली पहली कुड़ी भी तू है ते आखरी भी तू।
0: गुलाब सिद्धू अते जैस्मीन पसीन दी अदाकारी वेखो गिल रौंता दी लिखी अते सिमरजीत सिंह वल्लों डायरेक्ट कीती पंजाबी फिल्म जुदा। रिलीज होवेगी 21 अगस्त नू।
2: सुनो जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वल ले लो।
3: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वल जाना तुसी आ किथे जा रहे हो।
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्सटंच
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
4: यू आर लिसनिंग
5: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन। रेडियो
4: हांजी स्टे ट्यून्ड।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

और क्यों एक मूड ते आके मैनू लगदा है कि तेरी होंद नू बयानण लई जिवें हमेशा ही कोई कसर बाकी रह जांदी है। मैं तैनू दुनिया दे नजारियां नाल मेल मेल के वेखण दी गलती कर बैठा, पर तू तां अपने आप विच मौलिक अलहदा ते कुदरत दी शाना दी सिरजना है।

0: ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਪਤਾ ਫੇਰ ਕਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਵੱਜਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
2: Hanji Radio.
3: सुनो जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
4: और जो हुकम मेरी सरकार।
3: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना तुसी आ किथे जा रहे हो?
4: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
3: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
4: आहो जी आहो
3: अक्षरा ज्वेलर अपनी

0: अक्षरा जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: दिला दे घर, दिला दे घर, बना दे घर, दिला दे घर।
1: Oh my God, this is original.

हाँ भाई सिडनी वालियो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन, रेडियो हांजी।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

0: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। इना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

हाई ऑस्ट्रेलिया, हाई मेलबर्न, मैं आपका माजन बोल रहा हूँ यानी कि मैडी, और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM।

इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए, क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए, खुश रहिए।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो बंसल इमीग्रेशन .com.au।
2: रेडियो हाँ जी 1674 AM।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: This station is now the ultimate power in the universe.
3: Radio Haji 16748.

0: गौड़ी सुखमी महला पंजवा सुखमी सुख अमृत प्रवनाम भत जना कै मन विश्राम सलोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद
1: आद गुर ए नमे जुगाद गुर ए नमे सतगुर ए नमे श्री गुरुदेव ए नमे
0: सतनाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल कलेश तन माहे मिटावो
1: सिमरो जसप संबर एक है नाम चवत अगनत अनेक है
0: वेद पुराण सिमर सुधाखर कीने राम नाम एक अखर
1: जीव सावे ताकि महिमा गनी न आवे
0: कांखी एक है दर्स तुहारू नानक गुण संग मोहे उधारू
1: सुख मनि सुख अमृत प्रवनाम भगत जना कै मन विश्राम रहाओ
0: प्रभु कै सिमरन गर्भ नवसै प्रभु कै सिमरन दुख जम नसै
1: प्रभु कै सिमरन काल पर हरै प्रभु कै सिमरन दुश्मन टरै
0: प्रभु सिमरत काछ बिघन लागै प्रभु कै सिमरन आनंद न जागै
1: प्रभु कै सिमरन भव न व्यापै प्रभु कै सिमरन दुख न संतापै
0: प्रभु कै सिमरन सार कै संग सर्ब निधान नानक हर अंग
1: प्रभु कै सिमरन सिद्ध नौ नित प्रभु कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध
0: प्रभु कै सिमरन जपता पूजा प्रभु कै सिमरन बिनसै दूजा
1: प्रभु कै सिमरन तीर्थ स्नानी प्रभु कै सिमरन दरगाह मानी
0: प्रभु कै सिमरन होय सो भला प्रभु कै सिमरन सो फल फला
1: सि सिमरै जिने आप सिमराए नानक ताकै लागो पाए
0: प्रभु कै सिमरन सब ते ऊंचा प्रभु कै सिमरन उदरे मूचा
1: प्रभु कै सिमरन तिसना बुझै प्रभु कै सिमरन सब के सूझै
0: प्रभु कै सिमरन आही जम तरसा प्रभु कै सिमरन पूर्ण आसा
1: प्रभु कै सिमरन की मल जाए अमृत राम रिद महे समाए
0: प्रभु जी बसै साध की रसना नानक जन का दासन दसना
1: प्रभु को सिमरै सी धनवंते प्रभु को सिमरै सी पतवंते
0: प्रभु को सिमरै सी जन परवान प्रभु को सिमरै सी पुरख प्रधान
1: प्रभु को सिमरै सी बेमुहताजे प्रभु को सिमरै सी सर्व के राजे
0: प्रभु को सिमरै सी सुखवासी प्रभु को सिमरै सदा अविनाशी
1: सिमरन ते लागे जिन आप दयाला नानक जन की मंगे रवाला
0: प्रभु को सिमरै सी पर उपकारी प्रभु को सिमरै तिन सद बलिहारी
1: प्रभु को सिमरै सी मुख सुहावै प्रभु को सिमरै तिन सुख बिहावै
0: प्रभु को सिमरै तिन आत्म जीता प्रभु को सिमरै तिन निर्मल रीता
1: प्रभु को सिमरै तिन अंध घनेरे प्रभु को सिमरै बसे हर नेरे
0: संत कृपा ते आंदन जाग नानक सिमरन पूरै भाग
1: प्रभु कै सिमरन कारज पूरै प्रभु कै सिमरन कबू न जूरै
0: प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी प्रभु कै सिमरन सहज समानी
1: प्रभु कै सिमरन निचल आसन प्रभु कै सिमरन कमल विगासन
0: प्रभु कै सिमरन अनहर चुनकार सुख प्रभु सिमरन का अंत न पार
1: सिमरै से जन जिन कृपा मैया नानक तिन जन सरनी पैया
0: हर सिमरन कर भत प्रगटाए हर सिमरन लग बेद उपाए
1: हर सिमरन पैसे जति दाते हर सिमरन नीचो कुण जाते
0: हर सिमरन धारी सब धरना सिमर सिमर हर कारण करना
1: हर सिमरन क्यों सगल अकारा हर सिमरन मैं आप निरंकारा
0: कर कृपा जिसे आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया
1: सुख मनि सुख अमृत पब नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ इक सलोक
0: दीन दर दुख भंजना घट घट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रसाथ सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी
1: या मात पिता सुतमीत ना भाई मन उहा नाम तेरा संग सहाय
0: जह महा भयान दूत जम दल है तह केवल नाम संग तेरा चले
1: जह मुश्किल होवे अत भारी हर को नाम खिन माहे उधारी
0: अनक पुनः चरण करत नीता रह हर को नाम कूट पापर हरै
1: गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख नेरे
0: सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत हि सुखिया
1: लाख करोड़ी बंधन परै हर का नाम जपत निस्तरै
0: अनक माया रंग तिख न बुझावै हर का नाम जपत आगावै
1: ये मार्ग हो जात गीला तै हर नाम संग होत सुहेला
0: ऐसा नामन सदा ध्याइयै नानक गुरमुख परमगत पाइयै
1: छूटत नाही को लख बाही नाम जपैता पार पराही
0: अनक बगन जह आए संघारै हर का नाम तत्काल उधारै
1: अनक जून जन मैं मर जाम नाम जोत पावै विश्राम
0: हौ मैला मल कब हो ना धोवै हर का नाम कूट पाप खोवै
1: ऐसा नाम जपो मन रंग नानक पाइयै साध कै संग
0: जिह मार्ग के गन जाहे न पूसा हर का नाम उहा संग तोसा
1: जै पैंडे महा अंध गुबारा हर का नाम संग उजियारा
0: जहां पंथ तेरा को न सुजानू हर का नाम तह नाल पछानू
1: जा महा बयान तपो घाम ते हर के नाम की तू उपर छाम
0: जहां तिरखा मन तुझ आ कर खै तह नानक हर हर अमृत बरख है
1: भगत जना की बर्तन नाम संत जना कै मन विश्राम
0: हर का नाम दास की ओट हर कै नाम उधरे जन कोट
1: हर जस कर संत दिन रात हर हर औखत साध कुमार
0: हर जन कै हर नाम निदान पार ब्रह्म जन की नो दान
1: मंत्र रंग रते रंग एक है नानक जन कै बिरद विवेक है
0: हर का नाम जन को मुक्त जोत हर कै नाम जन को तृप्त भुगत
1: हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत का परे न भंग
0: हर का नाम जन की वडियाई हर कै नाम जन शोभा पाई
1: हर का नाम जन को भोगजो हर नाम जपत कछ नाहे बिजो
0: जन राता हर नाम की सेवा नानक पूजै हर हर देवा
1: हर हर जन के मालिक जीना हर धन जन को आप प्रभु दीना
0: हर हर जन कै ओट सतानी हर प्रताप जन अवर न जानी
1: ओत पोत जन हर सराते सुन समाद नाम रसमाते
0: आठ पहर जन हर हर जपै हर का भत प्रगट नी छपै
1: हर की भगत मत पौ करै नानक जन संकेते तरै
0: पार जात एहो हर को नाम काम तीन हर हर गुण गाम
1: सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर दुख लथा
0: नाम की महिमा संत रिदवस है संत प्रताप दुर सब नसै
1: संत का संग उड़ भागी पाई है संत की सेवा नाम धियाई है
0: नाम तुल का छबर न होए नानक गुरमुख नाम पावे जन कोए
1: सुखमनि सुख अमृत पब नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ दो श्लोक
0: बहु शास्त्र बहु सिमृति पेखे सर्ब टंडोल पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी
1: आप ताव ज्ञान सब ध्यान खास शास्त्र सिमृत वख्यान
0: योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया सगल त्याग मन मध्य फिरे ਦਿਆ
1: ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਏ ਬਹੁ ਜਤਨਾ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਹੋ ਮੈਂ ਬਹੁ ਰਤਨਾ
0: ਸਰੀਰ ਕਟਾਏ ਹੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਾਤੀ ਵਰਤ ਨੇਮ ਕਰੈ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ
1: ਨਹੀਂ ਤੁਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰ
0: ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਮੀ ਫਿਰੈ ਚਰ ਜੀਵੈ ਮਹਾ ਉਦਾਸ ਤਪੀਸਰ ਥੀਵੈ
1: ਅਗਨ ਮਾਏ ਹੋ ਪ੍ਰਾਨ ਕਨਕ ਅਸ ਹੈ ਬੁਰਦਾਨ
0: ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਕਰੈ ਬਹੁ ਆਸਨ ਜੈਨ ਮਾਰਗ ਸੰਯਮਤ ਸਾਧਨ
1: ਨਿਮਕ ਨਿਮਕ ਕਰ ਸਰੀਰ ਕਟਾਵੈ ਤੋ ਵੀ ਹੋ ਮੈਂ ਮੈਲ ਨਾ ਜਾਵੈ
0: ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਸੰਸਰ ਕਛ ਨਾਹੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਤ ਗਤ ਪਾਹੇ
1: ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਦੇ ਛੁਟੈ ਗਰਭ ਗੁਮਾਨ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਹੁਟੈ
0: ਸੋਚ ਕਰੈ ਦਿਨ ਸਾ ਰਾਤ ਮਨ ਕੀ ਮੈਲ ਨਾ ਤਨ ਤੇ ਜਾਤ
1: ਦੇਹੀ ਕੋ ਬੋ ਸਾਧਨਾ ਕਰੇ ਮਨ ਤੇ ਕਬੂ ਨੂੰ ਭਿਖਿਆ ਟਰੈ
0: ਜਲ ਤੋ ਵੈ ਬਹੁ ਦੇਹ ਅਨੀਤ ਸੁਧ ਕਹਾ ਹੋਏ ਕਾਚੀ ਭੀ
1: ਮਨ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਊਚ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਉਦਰੇ ਪਤਤ ਬਹੁ ਮੂਚ
0: ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਜੋ ਕਾ ਭਾਉ ਵਿਆਪੈ ਅਨਕ ਜਤਨ ਕਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਧਰਾਪੈ
1: ਏਕ ਅਨੇਕ ਗੰਨੀ ਬੂਝੈ ਕੋਟ ਪਾਵ ਦਰਗੈ ਨੀ ਸਿਜੈ
0: ਛੂਟ ਸੁਨਾਹੀ ਉਬ ਪਾਇਆਲ ਮੋਹਿ ਵਿਆਪੈ ਮਾਇਆ ਜਾਲ
1: ਅਵਰ ਕਰਤੂ ਸਗਲੀ ਜਮਡਾਨੈ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿੰਤਿਨ ਨੀ ਮਾਨੈ
0: ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਦੁਖ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਬੋਲੈ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ
1: ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੈ ਸਾਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੈ
0: ਜੇ ਕੋ ਆਪਣਾ ਦੁਖ ਮਿਟਾਵੈ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸਦ ਗਾਵੈ
1: ਜੇ ਕੋ ਆਪਣੀ ਸੁਭਾ ਲੋਰੇ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਇਹ ਹੋ ਮੈਂ ਛੋਰੇ
0: ਜੇ ਕੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਡਰੈ ਸਾਜਨਾ ਕੀ ਸ਼ਰਨੀ ਪਾਰੈ
1: ਜਿਸ ਸੰਕੋਪ ਦਸ ਪਿਆਸਾ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਹਿ ਬਲ ਬਲ ਜਾਸਾ
0: ਸਗਲ ਪੁਰਖ ਮੈਂ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾ ਕੈ ਮਿਟੈ ਬਿਮਾਨ
1: ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣਾ ਨੀਚਾ ਸੋ ਉਗਨੀਏ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ
0: ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਹੋਏ ਸਗਲ ਕੀਰੀਨਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤਿਨ ਘਟ ਘਟ ਚੀਨਾ
1: ਮਨ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਮਟਾਨਾ ਪੇਖੈ ਸਗਲ ਸਿਸ਼ਟ ਸਾਜਨਾ
0: ਸੁਖ ਦੁਖ ਜਨ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤਾ ਨਾਨਕ ਪਾਪੋ ਨਿਹਲੇ ਪਾ
1: ਨਿਰਧਨ ਕੋ ਧਨ ਤੇਰੋ ਨਾਉ ਨਿਥਾਵੇ ਕੋ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਥਾਉ
0: ਨਿਮਾਨੇ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੋ ਮਾਨ ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੋ ਦੇਵੋ ਦਾਨ
1: ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਰ ਸੁਆਮੀ ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ
0: ਆਪਣੀ ਗਤ ਮਿਤ ਜਾਣੋ ਆਪੇ ਆਪਣ ਸੰਗ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਰਾਤੇ
1: ਤੁਮਰੀ ਉਸਤ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਸ ਕੋਏ
0: ਸਰਬ ਧਰਮ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ
1: ਸਗਲ ਕਿਰਿਆ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਕਿਰਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰਿਆ
0: ਸਗਲ ਉਦਮ ਮੈਂ ਉਦਮ ਭਾਲਾ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਸਦਾ
1: ਸਗਲ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਕੋ ਜਸ ਨੂੰ ਰਸਨ ਬਖਾਣੀ
0: ਸਗਲ ਥਾਨ ਤੇ ਉਹ ਉੱਤਮ ਥਾਨ ਨਾਨਕ ਜੀ ਘਟ ਬਸੈ ਹਰ ਨਾਮ
1: ਸੁਖ ਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਵ ਨਾਮ ਭਗਜਨਾ ਕਹਿ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ ਅੱਠ ਤਿੰਨ ਸਲੋਕ
0: ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰ ਇਹ ਆਨਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲ ਜਿਨ ਕੀ ਆਤਿਸ਼ ਚੀਤ ਰੱਖ ਨਾਨਕ ਨਿਭੀ ਨਾਲ ਸਤ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਰਾਮਈਆ ਕੀ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪਰਾਨੀ ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਵਨ ਦਸ਼ਟਾਨੀ
0: ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਧ ਸਵਾਰ ਸੀ

0: मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानूं हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने इक दहाके तों वेर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।

0: Nanak Dev Ji had in him, when he was asked, Guruji, what weapon do you use? Garibi gada hamari, the weapon that I use is humility.
1: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साला तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर ता दे बंसल इमिग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406 660 960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.

0: is a time to bid goodbye to the old and the ordinary, and to awaken the beauty within. That time is now. It is time to wake up and take charge of life. Awaken to a new way of thinking. Awakening with Brahma Kumaris.
1: Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, sister.
2: Om Shanti.
1: Being bliss mein aapka swagat hai.
2: Thank you so much.
1: Aapke homework bahut dangerous hai.
2: What happened?
1: What happened? Kya hai? Ki wo zara chup rehna mushkil ho raha hai.
2: Koi bhi parivartan, thoda sa attention rakhna padega. Bas aur kuch bhi nahi karna hai. Bhale mushkil lag raha ho, result kya milti hai?
1: Result mein sach bataun, jab maine zor se bola na 3 baar karo, tab hua kaam.
2: Haan.
1: Tab tak to 3 baar main try kiya tha.
2: Very nice.
1: Nahi hua.
2: Nahi hua. Now this also, what will happen? मैंने प्यार से बोला, उन्होंने नहीं किया. फिर मैंने प्यार से बोला, उन्होंने नहीं किया. फिर मैंने जोर से बोला,
1: तो हो गया.
2: तो हो गया. अब ये जब मैंने देखा कि मैंने जोर से बोला, हो गया, तो मेरा बिलीफ सिस्टम क्या बन गया कि जोर से बोलने से काम हो जाता है. नाउ लेट अस आल्सो अंडरस्टैंड कि सामने वाला भी, स्पेशली जो वो लोग हैं जो हमारे साथ ज्यादातर रहते हैं या काम करते हैं, वो भी हमें जानने लग गए हैं.
1: फिर मैंने पूछा भी, क्या मेरे सिर्फ जोर से बोलने पे ही चलेगा? तभी आपके समझ में आएगा कि जरूरी है मुझे चिल्लाना.
2: नाउ व्हाई? क्योंकि हमें भी एक दूसरे का स्वभाव, संस्कार बहुत ज्यादा अब पता चलने लग गया है. वी ऑल्सो स्टार्ट फीलिंग कि जब ये जोर से बोलते हैं, दैट इज व्हेन इट इज सीरियस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ब्रेक दैट बिलीफ सिस्टम. बी असर्टिव बट नॉट लाउड एंड एंग्री. सी रिपीटेड पैटर्न. हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब हम चेंज हो रहे हैं तो सामने वाला भी उसी तरह से चेंज हो जाना चाहिए.
1: हाँ, ये तो मैंने कभी सोचा
2: नहीं. इट्स नॉट गोइंग टू हैपन ना. टुडे मॉर्निंग यू गेट अप एंड यू डिसाइड कि टुडे आई विल नॉट गेट एंग्री. एवरीबडी एल्स डजंट नो. या तो अनाउंसमेंट करनी है फिर सुबह.
1: अरे लोग पूछ रहे हैं कि आप नाराज हैं, आप सीरियस क्यों हैं, आज आप ऐसे क्यों हैं, आप बदले हुए क्यों हैं? तो क्या मैं चिल्लाता रहूं?
2: पर रोज वो हो रहा था ना. रोज वो हो रहा था तो आपके साथ जो नेचुरल की डेफिनेशन लगी हुई थी, अभी सडनली एक वन मॉर्निंग जब हम अलग तरह से व्यवहार करें तो वो नेचुरल की डेफिनेशन चेंज हो रही है. तो डू नॉट एक्सपेक्ट कि जिस दिन हम चेंज हो सामने वाला इमिडिएटली चेंज हो जाएगा.
1: कितना वाइब्रेंट था बंदा, क्या जान थी उसमें. पता नहीं तुम कमजोर सा हो गया, पता नहीं चुप सा हो गया, उदास सा हो गया, ऐसी बातें सुनने में मिलती.
2: एंगर को हमने स्ट्रेंथ समझा हुआ था. जोर से बोलना, चिल्लाना, शोर मचाना, इसको स्ट्रेंथ समझा हुआ था. इसको पावर समझी हुई थी. यू नो मेनी टाइम्स पीपल से इफ यू डोंट नॉट गोइंग टू गेट एंग्री दैट मींस यू आर वीक एंड इवन गेट स्केयर्ड कि लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में आसपास, कि मैं कुछ बोलता भी नहीं ऊपर से. Somebody says something, मैं चुप रहता हूँ, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में. Then third fear, people will start taking me for granted. फिर तो कोई भी कुछ भी करेगा and I'll not say anything. This is what they will feel.
1: नहीं है क्या, लोग जब देखते हैं कि इतना सब हो गया और ये आदमी चुप रहा, ये डरपोक है और
2: start taking for granted.
1: हाँ,
2: कि कुछ
1: तो कुछ भी बोल दो चलेगा, इसको बार बार बोलते रहो.
2: Okay, इन दोनों बातों की थोड़ी सी गहराई से चेकिंग करनी चाहिए कि एक, अगर हम चुप रहेंगे, अगर हम शांत रहेंगे, अगर हम रिएक्ट नहीं करेंगे तो हम कमजोर हैं. जो शोर मचा देगा, चिल्ला देगा, किसी के सामने वाले की बात नहीं सुनेगा, उसकी बात पर उल्टी अपनी बात जोर से बोल देगा, अपने आप को डिफेंड करेगा, वो स्ट्रांग है. दिस इज द बिलीफ सिस्टम. राइट नाउ वी डोंट नो व्हाट एवरीबडी सेज. वी हैव टू आस्क आवरसेल्फ कि जब कोई परिस्थिति आती है उस परिस्थिति में रिएक्ट कर देना वो इजियर है या चुप रहना वो इजियर है. रिएक्ट करना, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हर एक कर लेगा. बात आई, रिएक्ट कर दिया, उसने शोर मचाया, उससे ज्यादा जोर से शोर मचा दिया, उसने चिल्लाया तो मैंने तो हाथ ही उठा दिया, ये तो इजी है. लेकिन सामने वाले ने कुछ किया, क्रिटिसाइज किया, झूठ बोला, गलत किया, मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, और हम चुप रहे, दिस विल रिक्वायर स्ट्रेंथ. सो विच इज मोर पावरफुल?
1: पावरफुल चाहिए हमको या दुनिया में जीना है?
2: अब दुनिया में जीना है. दुनिया में जीने के लिए हमने पिछली बार भी, इनफैक्ट हम इतने दिनों से यही देख रहे हैं कि जीने के लिए क्या चाहिए? ताकत चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए.
1: मैं तो समझता हूँ जीने के लिए दो थप्पड़ मारो किसी को, अगली बार वो नजदीक नहीं आएगा.
2: नो प्रॉब्लम. एक बात आई, किसी स्टाफ ने काम नहीं किया, हमने गुस्सा कर दिया, काम हो गया, काम हो गया.
1: आसपास वाले भी डर के रहते,
2: सब लोग डर के रहते हैं, काम हो जाते हैं, सारे काम हो जाते हैं. फिर टेलीफोन वाले का फोन आया, उसने कुछ गलत किया था, काम नहीं कर रहा था जो उसको बोला, उस पर चिल्लाया, वो काम हो गया. फिर किसी प्लम्बर को फोन किया, कार्पेंटर को फोन किया, उसने ठीक से काम नहीं किया था, उस पर चिल्लाया, मेरा काम हो गया. ऑफिस में किसी ने ठीक से काम नहीं किया, उस पर शोर मचा दिया, काम हो गया. फिर बच्चे भी गलत किया, उन पर भी चिल्ला दिया, तो भी मेरा काम हो गया. बच्चे डिसिप्लिन हो गए, सब लोग मेरा कहना मानने लग गए. सिनारियो परफेक्टली वर्क्स लाइक दिस.
1: करेक्ट.
2: ये बिलीफ सिस्टम से हम रिएक्ट करते गए, काम होते गए, बच्चे कहना मानते गए, लोग मुझसे डरते गए, काम होते गए, वी अचीव्ड एंड अचीव्ड एंड अचीव्ड. लेकिन

0: लगा दिया दूसरे पे, काम हो गया। एनर्जी कौन सी क्रिएट की, मैंने कौन सी एनर्जी क्रिएट की, आई द बीइंग कितनी टर्बुलेंट एनर्जी क्रिएट की। एंड उसका प्रूफ है कि वो टर्बुलेंट एनर्जी सिर्फ यहां नहीं डिस्टर्ब करती, उस क्षण अपना पल्स देख ले, उस क्षण अपना हार्ट बीट चेक कर ले,
1: मुझे पसीना भी आया था ज्यादा गुस्से में,
0: उस क्षण अपना ब्लड प्रेशर उसी क्षण चेक करवा ले। ये तीन पैरामीटर्स तो आप चेक करवा लो उस टाइम पे।
1: कभी कभी ज्यादा गुस्से में हाथ कांपते हैं,
0: यस, मुंह जबान लड़खड़ाती है, शब्द बदल जाते हैं सारे। अब बात हो गई, काम हो गया, टर्बुलेंट इतना, सी इफेक्ट ऑफ माइंड ऑन बॉडी, वी हैव सीन के हर थॉट का बॉडी पर इफेक्ट होता है, लेकिन ये इफेक्ट तो उसी टाइम दिखाई देता है, मतलब वो टर्बुलेंट थॉट पावरफुली टर्बुलेंट कितनी है कि उसका इफेक्ट उसी समय बॉडी पर मैनिफेस्ट हो गया सारा। अब 10 मिनट बाद बात खत्म हो गई, उतनी देर में कोई और बात आ गई, मैंने फिर वो वाला मेथड यूज किया, क्योंकि नाउ इट्स बिकम माय बिलीफ सिस्टम एंड यू नो नाउ दिस हैज बिकम अ सेंस ऑफ पावर फॉर मी, आउटर पावर, कि मैं बोलता हूँ काम हो जाता है।
1: सिस्टर इजी भी तो हो गया ना,
0: काम हो गया ना,
1: छुट्टी में काम हो गया।
0: अब जितनी अंदर पावर कम होती जाएगी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जितनी अंदर पावर कम होती जाएगी, फॉर मी टू फील पावरफुल आई विल नीड टू ऑलवेज बी श्योर दैट अदर पीपल आर इन माई कंट्रोल।
1: फॉर मी टू,
0: फिर से ध्यान से देखते हैं, बिकॉज इट्स वेरी डीप और इसकी हर एक की चेकिंग होने वाली,
1: मुझे दोबारा सुनना है।
0: जितना हम आज क्यों हम चाहते हैं कि लोग हमारे कंट्रोल में रहे, लोग मेरा कहना माने, जैसा मैं चाहूं वैसा होना चाहिए, बिकॉज जब ऐसा होता है आई एम पावरफुल, चाहे वो एक फादर है, एक हस्बैंड है, एक मालिक है, एक दोस्त है, कुछ भी, दैट साइन ऑफ पावर, दैट साइन ऑफ कंट्रोल, आई एम कंट्रोलिंग, आई एम द पावरफुल वन।
1: सब मेरे भी करते हैं,
0: हाँ हाँ, सो इट्स नॉट अबाउट मेन, इट्स अबाउट द सोल, इट्स एवरीबडी। ये क्यों, और ये बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, क्योंकि जितना अंदर मेरा अपने पे कंट्रोल नहीं है, मेरा अपने पे कंट्रोल नहीं है, मेरा अपने मन पर, अपने शब्दों पर, अपने हाथ पर भी धीरे धीरे कंट्रोल नहीं है, जितना अपने पर कंट्रोल नहीं, सो आई स्टार्ट बिकमिंग पावरलेस ना, एनीथिंग व्हिच इज आउट ऑफ कंट्रोल।
1: एक मिनट, मुझे एक पॉइंट बड़ा अच्छा लगा, आपने कह दिया कि मैं जब लोगों को कंट्रोल कर रहा हूँ तो उसका मतलब तो आपने कह दिया कि मुझे अपने पर कंट्रोल नहीं है।
0: नो, इट्स नॉट नेसेसरी कि जब आप लोगों को कंट्रोल कर रहे हो तब आपका अपने पे कंट्रोल नहीं है, लेकिन चेकिंग कि लोगों को काम कराने का और कंट्रोल करने का तरीका कैसा वाला है।
1: अगर मेरा गुस्सा निकलता रहता है तो देट मीन्स मैं वीक हूँ, मुझे अपने आप पे कंट्रोल नहीं है।
0: हर बार बीमार हो रहे हैं हर 10 मिनट बाद, अगर मेरा शरीर हर 10-15 मिनट बाद बीमार हो, आई से वीक बॉडी, नो, थोड़ा सा मौसम बदले बीमार, थोड़ा सा पानी कुछ पी लिया बीमार, थोड़ा सा एक हवा में कुछ बदला बीमार, कल से वीक बॉडी, इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा नहीं है। आसपास देखो, उन लोगों के लिए भी तो वही मौसम बदला था ना, वो कैसे ठीक है सभी, डॉक्टर बोल से वीक बॉडी, अपने को स्ट्रांग बनाओ। सिमिलरली बात आई बीमार, फिर कुछ हुआ फिर बीमार, फिर थोड़ा सा तो बात नहीं भी आई तो भी बीमार, कहेंगे इनको तो बिना बात के गुस्सा आता है, क्योंकि अब मेरी बीमारी इतनी बढ़ती गई, आई 10 मिनट रही, फिर 10 मिनट ठीक हुई, फिर 10 मिनट रही, धीरे धीरे वो 10 मिनट बीमारी 15 मिनट एक्सटेंड होती रही, देन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एंगर स्टार्टेड बिकमिंग माय वे ऑफ लिविंग, माय नेचर, फिर लोग
1: बीइंग एंगर, अब समझ में आया मुझे,
0: बीइंग एंगर, देन आसपास के लोग कहेंगे इनको तो बिना बात के भी गुस्सा आता है, मतलब बात कुछ चाहिए ही नहीं इनको अब गुस्सा करने के लिए, ऐसे ही गुस्सा कर देते हैं, क्योंकि आई हैव गॉट इन टू द पैटर्न। पहले क्या हुआ था, बड़ी बात आई, गुस्से का तरीका यूज किया, फिर धीरे धीरे देखा रिजल्ट मिला, काम हो गया, आई सेड दिस इज नाइस, मेरा काम हो जाता है, सब लोग मेरी बात सुनने लगते हैं, आई स्टार्टेड यूजिंग इट मोर ऑफन, धीरे धीरे फिर छोटे छोटे काम के लिए भी यूज करना शुरू कर दिया, फिर मेरा बन गया वो संस्कार,
1: नॉर्मल बात करते करते भी हो जाता है,
0: देन बिना कोई काम के भी इरिटेट हो जाएंगे। अब जितनी बार हुए टर्बुलेंट एनर्जी क्रिएट की, मन पर भी असर हुआ, शरीर पर भी असर हुआ, रिश्तों पे तो खैर प्रभाव पड़ा ही पड़ा, लेकिन मेरी अप,

0: अपनी पावर एवरी टाइम आई एम शिफ्टिंग फ्रॉम हेल्थ टू डिजीज एवरी टाइम. अगर मैं साल में 5 बार बीमार पड़ती थी पहले, अब मैं 20 बार साल में बीमार पड़ू तो इज साइन द बॉडी बिकमिंग वीक. इसी तरह अगर मेरे को दिन में 1 बार गुस्सा आता था, आज अगर मेरे को दिन में 5 बार गुस्सा आ गया, माइंड बिकमिंग वीक एंड विच मीन्स पावर कम होती जा रही है. जितनी अब ये बहुत डीप साइकिल कैसे बन जाएगा, ये डीप एडिक्शन कैसे बन जाएगी, जितनी पावर अंदर कम होती जाएगी उतना द नीड टू हैव पावर ओवर अदर पीपल विल इंक्रीज.
1: फिर से कहिए.
0: जितनी पावर अंदर कम होती जाएगी उतना द नीड टू हैव पावर ओवर अदर पीपल विल इंक्रीज टू फील पावरफुल.
1: माय गॉड.
0: सपोज आई एम इन कंट्रोल ऑफ माई सेल्फ राइट नाउ. ओके, इफ आई एम इन कंट्रोल ऑफ माई सेल्फ आई नो आई एम पावरफुल. पावरफुल इन द सेंस कि मुझे अपने पे गारंटी कि अगर परिस्थिति अच्छी नहीं भी होगी आई विल बी फाइन. दिस इज पावर. पावर नॉट ओवर सिचुएशन, पावर नॉट ओवर पीपल, पावर ओवर माई सेल्फ. ये गारंटी, ये अगर अपने पे गारंटी है कि इट मीन्स मेरे पे अपने पे गारंटी, मेरी हेल्थ ठीक रहेगी, अगर मौसम ठीक नहीं भी हुआ तो आई एम फाइन. जब इतना पावरफुल होंगे तो लोगों के ऊपर कंट्रोल करना ये पावर नहीं होगी मेरे लिए, बिकॉज आई नो आई एम पावरफुल. लेकिन जब अंदर पावर कम होती जाएगी, लोगों के ऊपर पावर, ये एडिक्शन बढ़ती जाएगी. अब जितनी ये बढ़ती जाएगी और उनको कंट्रोल करने के लिए फिर हम और ज्यादा रिएक्ट करेंगे, उतना अंदर की पावर
1: और कम होती जाएगी.
0: नाउ दिस इज अ डाउनस्लाइड एंड दिस इज अ वेरी फास्ट डाउनस्लाइड. वी आर नॉट इवन गोइंग टू रियलाइज इट्स गोइंग टू गो सो फास्ट. ऐसे बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी एंड जितनी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी उतना लोगों को कंट्रोल करना ये एडिक्शन बढ़ती जाएगी. जितना
1: लोग एडिक्शन एडिक्शन एडिक्शन यूज कर रहे हैं,
0: इट्स एन एडिक्शन. नो, इट्स अ वेरी डीप एडिक्शन दैट पीपल शुड बी इन माय कंट्रोल. आई नीड टू चेक दिस वेदर आई हैव दिस एडिक्शन. लोग मेरा कहना माने, लोग मेरे अनुसार चलें, जो मैं कहूं जैसा मैं कहूं वैसा होना चाहिए. दिस इज अ वेरी डीप एडिक्शन. हम तो अपनी सिर्फ ऊपर की एडिक्शन देते हैं.
1: तो दिमाग हिल गए सुन के ये वर्ड.
0: इट्स वेरी डीप
1: एडिक्शन.
0: ये एडिक्शन है क्योंकि फिर आपको हर बार चाहिए ये ना, हर एक के साथ चाहिए ना. फिर आप यू आर नॉट एबल टू लेट पीपल बी द वे दे वांट टू बी.
1: उसके बिना जी नहीं सकता है बंदा. फिर
0: अनइजी हो जाएगा ना. आप किसी के भी साथ होंगे, यू विल वॉन्ट देम टू बी द वे यू वॉन्ट देम टू बी. किसी के भी साथ, अब वो हर एक के साथ हो जाएगा क्योंकि अब वो मेरी एडिक्शन.
1: मेरे जैसे कि एक और सामने मिल गया, वो वाले एडिक्शन वाला
0: बहुत बड़ी टक्कर. दिस वी हैव टू चेक. ये बहुत बड़ी एडिक्शन है, सिचुएशन और लोग. एंड मोस्ट ऑफ अस हैव दिस एडिक्शन टुडे. रिएक्शन अलग अलग तरह करेंगे लेकिन ये एडिक्शन हम में से आज मेजोरिटी को है कि परिस्थिति और लोग मेरे अनुसार होने चाहिए. क्यों? क्योंकि जब परिस्थिति और लोग मेरे अनुसार होते हैं तब मैं खुश. चाहिए क्या मुझे जीवन में? खुशी. खुश रहने के लिए क्या मुझे चाहिए होगा? लोग और परिस्थिति मेरे अनुसार हो. तो मेरा पूरा जीवन का फोकस क्या हो गया? टू मेक सिचुएशंस एंड पीपल बी अकॉर्डिंग टू मी
1: एंड कंट्रोल देम ऑल द टाइम.
0: सारा दिन कंट्रोल है. एंड राइट फ्रॉम कंट्रोलिंग अ लिटिल चाइल्ड टू कंट्रोलिंग एवरी वन अराउंड मी. अब स्पिरिचुअलिटी इस फोकस को शिफ्ट करती है. फर्स्ट विद द अंडरस्टैंडिंग कि आप लोगों को कंट्रोल कर ही नहीं सकते. हाँ, क्योंकि हम शोर मचाएंगे, चिल्लाएंगे, या क्योंकि हम पोजिशन में है. यू नो, सपोज आप बॉस है, आपका स्टाफ है, आप पोजिशन में है. आप फादर हैं, आपके बच्चे हैं, आप पोजीशन में हैं, राइट? आप बड़े हैं एज में, दूसरे छोटे हैं, आप पोजीशन में हैं.
1: लिहाज है
0: नहीं, पोजीशन है. ये आपकी एक पोजीशन है, पोजीशन ऑफ एज, पोजीशन ऑफ रिलेशनशिप, पोजीशन प्रोफेशनली. इस पोजीशन की वजह से हमारे आसपास के लोग डर से, मजबूरी से,
1: आउट ऑफ रिस्पेक्ट,
0: नॉट आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ फियर.
1: ओल्ड बिलीफ सिस्टम भी है ना, बड़ों ने कुछ बोल दिया चलो चुप रहो.
0: लेकिन दैट्स नॉट रिस्पेक्ट. अगर बड़ों ने कुछ बोल दिया और मैं चुप रही लेकिन अंदर से मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं रिस्पेक्ट नहीं किया उस टाइम. फिर
1: तो मुझे अगर कोई छोटा बोले तो मैं तो बोलूंगा कि ही इज डिसरिस्पेक्टिंग मी.
0: यस, क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगा. सी, आपने कुछ कहा.
1: अगर उस छोटे ने मुझसे बोला कि डैडी आपने ये जो बात बोली अच्छी नहीं लगी, तो मुझे वो अपनी तरफ से सही है.
0: सही कह रहा है, बिल्कुल कह रहा है.
1: और मैं उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं समझूं?
0: नहीं, लेकिन आपको वो डिसरिस्पेक्ट इसलिए लगेगी. सपोज आपने कुछ कहा, अगर
1: बोलेगी नहीं, बीवी नहीं बोलती है, देख लेते हैं आप ज्वाइंट फैमिलीज में, डैडी से ऐसी बात नहीं करते बेटा, बड़े हैं ना, उन्होंने बोल दिया ना, अब चुपचाप शांति में रहो, बड़े कुछ बोलते हैं तो चुप रहो. तब अगर मुझे डायरेक्ट मेरा बेटा मुझे बोले कि आपने क्या कह दिया मुझे, ये कर दिया मुझे, ऐसे थोड़े आप बात करते हो, मैं भी तो बड़ा हो जाऊं, तो फिर मुझे डिसरिस्पेक्ट लगता है कि भाई छोटा बड़ों को बोल रहे हैं.
0: परफेक्ट. क्योंकि हमारी रिस्पेक्ट की डेफिनेशन क्या थी. रिस्पेक्ट की डेफिनेशन यहाँ हम चेक करेंगे. आप फादर हैं, वो बच्चा है, या आप बॉस हैं, वो स्टाफ है. आपने बोला, उसने माना, ये रिस्पेक्ट.
1: या बर्दाश्त कर गया या चुप रह गया.
0: तो आपने बोला, उसने माना, माना और किया, राइट? आपने बोला, उसने किया, दिस वॉज रिस्पेक्ट.
1: मेरी इज्जत रखी, मेरा मान रखा,
0: तो रिस्पेक्ट. अब इसको देख लो, आपने कुछ बोला, मैंने कर दिया. क्यों कर दिया? आउट ऑफ फियर, मजबूरी, या फिर क्योंकि मेरी भी ये डेफिनेशन है कि अगर नहीं, अगर उल्टा कुछ बोल दो या करने से मना कर दो तो दिस इज डिसरिस्पेक्ट. ओके, अब ये हमारी डेफिनेशन है. तो हमने करना शुरू कर दिया जो हमें किसी ने कहा, लेकिन करते करते हम खुश नहीं है वो करते.
1: हाँ, मजबूरी से करता है.
0: मजबूरी से करता है आदमी. अब मजबूरी से कर रहे हो मतलब मैं कर रही हूँ, अंदर खुश नहीं हूँ, मेरा मन नहीं है, ये सही भी नहीं है, मुझे मालूम है इसका रिजल्ट अच्छा नहीं निकल के आने वाला, लेकिन अब इन्होंने बोला है तो करना पड़ेगा. ये हर टाइम मेरे ऊपर अपना जो भी है इंस्ट्रक्शन वो इन्फोर्स कर देते हैं, एंड आई हैव टू डू इट. ये सारी थॉट्स एनर्जी कौन सी है? हैवी हैवी. मैं कंटिन्यूसली सोचूंगी, मैं काम करूंगी, आपका कहना भी मानूंगी, लेकिन अंदर टर्बुलेंट एनर्जी क्रिएट हो रही है. आपको लग रहा है यू आर वेरी हैप्पी कि आपने कहा, मैंने माना, गिव्स यू अ सेंस ऑफ पावर, कंट्रोल. लेकिन सपोज जितनी देर, एंड वो देर हो सकती है या तो 10 मिनट, 10 दिन, 10 साल या जीवन भर, लेकिन उतनी देर मैंने आपके लिए थॉट्स कैसे क्रिएट की, इनकी वजह से मुझे ये करना पड़ रहा है, इन्होंने बोला मैंने किया. हर बार अपनी बात मनवाते हैं, हम तो कुछ नहीं बोल सकते हैं ऊपर से, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, क्या करें, आई डोंट हैव चॉइस, मजबूरी है, करना पड़ता है. दिस इज नॉट रिस्पेक्ट. रिस्पेक्ट मीन्स प्योर पावरफुल एनर्जी, क्लीन ब्यूटिफुल थॉट्स फॉर द अदर पर्सन. ये एक एक थॉट बहुत अच्छी नहीं है, मैं खुश नहीं हूं, मैं उदास हूं और आप मेरी उदासी का कारण है, दिस इज हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नेगेटिव एनर्जी. व्हेन आई होल्ड समबडी एल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मी बीइंग इन पेन, पेन मीन्स आई एम नॉट हैप्पी विद व्हाट एवर आई हैव डन, दैट पर्सन इज गेटिंग नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम मी, दिस इज नॉट रिस्पेक्ट. लेकिन हमने रिस्पेक्ट को उस लेवल पर तो देखा ही नहीं ना. हमारे लिए रिस्पेक्ट क्या थी? मैंने बोला, हो गया, मैं रूम में आया, उठ गए, जैसे मैंने कहा करते गए. मीन्स दे रिस्पेक्ट मी, दे फियर मी. फियर एंड रिस्पेक्ट एक टाइम पे नहीं रह सकता है. फियर एंड लव एक टाइम पे नहीं रह सकते हैं. ये दोनों ऑपोजिट एनर्जीज हैं. जो हमसे डरते हैं वो हमें रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे आते ही या हमारी थॉट से ही उनकी एनर्जी डिस्टर्ब्ड हो जाती है. एनर्जी ऑफ फियर इज वन ऑफ द हाईएस्ट नेगेटिव एनर्जीज. एनर्जी ऑफ फियर, मुझे डर लगता है इनसे, दिस इज नॉट रिस्पेक्ट. आपको अगर औरों से रिस्पेक्ट चाहिए तो मतलब दूसरे मेरे बारे में कैसा सोचे. तो ये जो हमने डेफिनेशंस बनाई हुई है, अब जितना, अब ये आपके लिए क्या रिस्की है? एक, आपको कंटिन्यूअस मुझसे ये एनर्जी मिलेगी, अगर वो कोई बहुत बड़ा डिसीजन था तो कंटिन्यूस आपको वो एनर्जी मिलेगी। जब हमें औरों से नेगेटिव एनर्जी मिल रही होती है वो हमारी बैटरी को डिप्लीट कर रहे हैं। कहना तो मान लिया, मुझे लगा आई एम पावरफुल, लेकिन अंदर से माई पावर इज गेटिंग डिप्लीटेड। वन, बिकॉज माई सेंस ऑफ पावर हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल, एंड सेकेंड दैट अदर पर्सन इज कंटिन्यूसली सेंडिंग मी नेगेटिव थॉट्स। ये दिखाई नहीं देगा, ये किसी को दिखाई नहीं देगा कि कैसे हो रहा है, लेकिन दूसरों की वाइब्रेशन मेरी एनर्जी को सख करते जाएगी। जब लोग मुझसे डरते हैं, वो डर उन पर इफेक्ट कम, मुझ पर इफेक्ट ज्यादा करेगा, क्योंकि सबका डर मेरी ताकत को।
1: लेकिन जब वो बड़े हो जाएंगे
0: हाँ,
1: तो वो जो उनके अंदर दबा हुआ है सप्रेशन, वो खट खट खट खट खट खट खट कर वापस बैकलैश आता है।
0: वो भी आएगा। वो इसलिए बैकलैश आएगा क्योंकि थॉट लेवल पे वो शुरू से था,
1: वो अंदर भरा पड़ा है। और जैसे ये बड़ा होने लग गया बच्चा, और थोड़ा इंडिपेंडेंट होने लग गया, शादी होगी और बड़ा हो गया, तब वो उसका एटीट्यूड बदलेगा, और तब उसको ना जानते हुए भी ना चाहते हुए भी वो जबरदस्ती के अपने बाप को या जो भी उसके ऊपर दबाव डालता था वो डालने लगेगा।
0: बिकॉज फियर ऑफ पोजिशन से वो बाहर निकलने लगा है। पहले पोजिशन थी ना, एज या पोजिशन, रिलेशनशिप, उस पोजिशन से वो बाहर निकलने लगा है। किसी न किसी कारण की वजह से वो आपका बात मानता गया, कोई भी, एनीबडी। अच्छा, इसमें भी रिस्क क्या आएगा? रिस्क देखो कितना है। जब तक लोग हमारा कहना मानते रहे, हमारे अनुसार चलते रहे, वी थॉट एवरीथिंग वॉज इन माई कंट्रोल। अब क्योंकि आपने कहा मैंने माना, फिर आपने कहा मैंने माना, दिस स्टार्टेड मेकिंग यू फील पावरफुल। जहां पावर बाहर किसी और पर हमें लगेगी, वहां एक थॉट हमेशा रहेगी ऑफ इनसिक्योरिटी, विल दे ऑलवेज रिमेन इन माई कंट्रोल। दिस इज वेरी सटल, क्योंकि जहां एडिक्शन होगी किसी पावर की, कंट्रोल की, वहां ये इनसिक्योरिटी हमेशा रहने वाली है कि क्या ये हमेशा मेरे ऐसे कंट्रोल में चलेंगे? अगर कल इन्होंने मेरी बात मानी नहीं तो अब हमेशा सामने वाला हमारी बात नहीं मानेगा। जिस दिन उसकी मजबूरी खत्म हो जाएगी, जिस दिन एज बच्चों की बड़ी हो जाएगी, जिस दिन उनकी डिपेंडेंसी हमारी किसी ना किसी चीज पर वो कम हो जाएगी, या जिस दिन कोई ऐसी बात होगी जो वो मान ही नहीं पाएंगे। कई बार ऐसे भी होगा कि कोई ऐसी बात आप उनको कहेंगे जो वो जस्ट नहीं मान सकते।
1: सिस्टर, मैं किसी को जानता हूँ जो बहुत प्रॉब्लम में थी, वो औरत, मतलब पति उसको दबाता ही रहता था। शादी के 20 साल बाद She was waiting for the daughter to get married. जैसे शादी हुई दूसरे दिन वो घर छोड़ के चले गई और डिवोर्स किया। कब से बर्दाश्त कर रही थी?
0: मजबूरी थी
1: हाँ, लेकिन जैसे आपने कहा ना,
0: टूटा
1: नहीं, रीजन क्या था
0: हाँ।
1: कि बेटी की शादी,
0: तो वो बात टूटी ना, आपकी मजबूरी खत्म हुई। जैसे ही वो लाइन क्रॉस हुई, आपकी डिपेंडेंसी, चाहे वो सोशल प्रेशर, कितनी रीजंस हो सकते हैं, जैसे ही वो टूटा तो आपने वो छोड़ दिया। लेकिन वो तो 20 साल बाद हुआ ना, दैट्स ओके। 20 साल बाद हुआ, 20 साल कैसे बीते वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 20 साल बाद मेरा कहना नहीं माना और इतना एक्सट्रीम स्टेप ले लिया, 20 साल कैसे बीते, दिस वी नीड टू चेक।
1: 20 साल पति का कहना मानती रही, बर्दाश्त करती रही,
0: कहना मानती रही भी ठीक है, लेकिन 20 साल ना, आई नीड टू आस्क माई सेल्फ, 20 साल कैसे बीते वाइफ के लिए दर्द में, अनहैप्पी। तो हम अगर, जैसे आपने भी किसकी पोजीशन,
1: पति के लिए एडिक्शन,
0: नहीं एडिक्शन भी ठीक है, लेकिन डिप्लीशन,
1: अच्छा,
0: दिस वेरी इम्पोर्टेंट। हम वो वाला एस्पेक्ट नहीं देखते, हम देखते हैं वाइफ बिचारी, मजबूर, पिटी, विक्टिम, क्योंकि हमारे हिसाब से जो कंट्रोल कर रहा है वो पावरफुल है, जो कंट्रोल हो रहा है वो विक्टिम है। एक्चुअली बहुत बड़ा विक्टिम वो है जो कंट्रोल कर रहा है। विक्टिम ऑफ हिज पावरलेसनेस। उसकी एनर्जी कितनी डिप्लीट हो रही है सारा दिन, इवन इन दिस पोजिशन। वॉट यू से,
1: तो उस पर कंपैशन करना चाहिए।
0: एब्सोल्युटली कंपैशन, लेकिन अगर हम उस पोजिशन में हैं तो आज हमें चेंज होने की जरूरत है। अगर हमारी डेफिनेशन ऑफ पावर, हमारी डेफिनेशन ऑफ डिसिप्लिन, डेफिनेशन ऑफ कंट्रोल एंड वेरी इंपॉर्टेंट लाइक यू सेड डेफिनेशन ऑफ रिस्पेक्ट, इवन डेफिनेशन ऑफ लव, इफ यू लव मी डू दिस फॉर मी।
1: नहीं बट आप मुझे थोड़ा फिर से एक्सप्लेन करेंगे वो क्यों विक्टिम है।
0: अच्छा, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है।
1: हाँ?
0: हस्बैंड बोलते गए, वाइफ करती गई।
1: हाँ?
0: जो बोला वो किया, जो बोला वो किया, खुश होकर नहीं किया, मजबूरी से किया।
1: हाँ?
0: तो जो मजबूरी से करता रहा वो भी 20 साल, ऐसा हाँ? नहीं थोड़े देर थोड़ा दिन, 20 साल दुखी रही, कहना मानती गई, कहना मानती गई, दुखी रही। एनर्जी कौन सी रेडिएट की? अनहैप्पीनेस। दिस इज द स्टोरी ऑफ द वाइफ एंड एवरीबडी विल हैव मर्सी फॉर द वाइफ। बिचारी विक्टिम है, अत्याचार उस पर हो रहा है, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन है ना ये पे। हस्बैंड किस पोजीशन में है? हस्बैंड आउटवर्डली ये फील करे आई एम वेरी स्ट्रांग, मैं जो बोलता हूं मेरा कहना माना जाता है, लेकिन एक्चुअली द बीइंग की पूरी पावर, सेंस ऑफ पावर सिर्फ इस पे डिपेंडेंट है कि वो मेरा कहना मानेगी। जब पावर दूसरे पे डिपेंडेंट हो गई, आपने ये लास्ट टाइम कहा, जितना दूसरे पर डिपेंडेंट है पावर के लिए उतनी अपनी पावर कम होती जाएगी। वो भी ठीक कि अपनी पावर कम होती जाएगी, व्हाट अबाउट 20 साल जो उसने उनके प्रति दर्द की थॉट्स क्रिएट की? आप देखो, अगर कोई एक व्यक्ति भी हमारे लिए कुछ नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करता है, वो हम तक नहीं पहुंचेंगे, वो हमें पहुंचती है, और जो ये वाइब्रेशन हमें पहुंचती है वो हमारी बैटरी को डिस्चार्ज, बिकॉज दिस सकिंग एनर्जी। मेरे को कंटिन्यूसली आपसे नेगेटिव मिले तो वो मुझे डिसएम्पावर करेगा। 20 साल हस्बैंड को वाइफ से दुख, उदासी की वाइब्रेशन मिल रही थी, वो हस्बैंड की पावर को अंदर से कम करती जा रही थी। अंदर से पावर कम होती जा रही थी तो आउटर पावर की एडिक्शन बढ़ती जा रही थी। दिस बिकेम वेरी विशियस साइकिल।
1: तो ये हस्बैंड क्या हुआ?
0: ये हस्बैंड अपनी वीकनेस का एक बहुत बड़ा विक्टिम है। मास्टर मीन्स हु इज इन कंट्रोल ऑफ हिमसेल्फ, एंड विक्टिम मीन्स जिसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं।
1: फैंटास्टिक पॉइंट, मैं जरूर इमीडिएटली नेक्स्ट एपिसोड में ये बात करना चाहूंगा कि मास्टर कौन है और विक्टिम कौन है। थैंक यू सो मच।
0: ओम शांति।
1: ओम शांति। थैंक यू सो मच। नमस्कार।
2: इफ यू विश टू डिस्कस योर प्रॉब्लम और हैव अ क्वेश्चन टू आस्क और वॉन्ट टू नो योर नियरेस्ट राजयोगा मेडिटेशन सेंटर, राइट टू अस एट awakeningwithbks@gmail.com or call us on 0999974555.

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
2: रेडियो हाँ जी 1674 AM समा हो चुका लाफ्टर थैरेपी का। कल दे गुस्से गिले परेशानियां जो भी मन दे उते बोझ सारा कुछ एक पासे रख के हसन हसाउण दा समा हो चुका। चुटकले सुनाउण दा समा हो चुका ते साडे नाल आ चुके ने बच्चे चुटकले सुनाउण दे लई। ते मैं वादा करदा कि जरूर जरूर जरूर हसूं ते तुसीं वी जरूर जरूर जरूर हसना क्योंकि ए आ लाफ्टर थैरेपी। सौण वाला अद्धा पौणा घंटा आपां हसना ते आओ फिर इस सफर दे विच आपां रल मिल के हसदे हां एक दूसरे दा साथ बन के हसदे हां ते अज दे इस सफर नूं आपां सोहणा वधिया घेंट बनाउणे हां ते लाफ्टर थैरेपी दे विच तुहाडा सारिआं दा भाई स्वागत है। सब तो पहलां साडे नाल होणगे मन्नत ते फतेह ते उस तों बाद साडे नाल मैं बेनती है जी थोड़ा जिहा हुण वेट कर लो तुसीं ते जिद्दां जिद्दां लाइनां वेलियां होणगियां फिर तुसीं कॉल करिओ। उस तों बाद अरनम तुसीं रेडी रहो। सत श्री अकाल मन्नत फतेह की हाल है।
3: सत श्री अकाल अंकल जी।
2: सत श्री अकाल की हाल है मन्नत दा।
3: मैं ठीक हां तुसीं दस्सो।
2: हां जी मैं भी ठीक हां पुत्तू तुसीं ठीक हो ते मैं भी ठीक। की कर रहे हो?
3: ਉਸਤਾ ਹੁਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਚ ਖੜੇ ਸੀ।
2: ਓਕੇ ਓਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਇਓ ਕਿ ਜਾਣਾ ਹਲੇ?
3: ਉਸਤਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਇਆ।
2: ਠੀਕ ਆਇਓ। ਓਕੇ ਗੁੱਡ ਗੁੱਡ ਗੁੱਡ। ਫਿਰ ਤੇ ਬੜੇ ਬੀਬੇ ਪੋਤੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕ ਆਉਂਦੇ ਹੋ।
3: ਥੈਂਕ ਯੂ।
2: ਹਾਏ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਸਿਆਣੀ ਜੀ ਮੰਨਤ ਹੋ ਗਈ ਤੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਗੁੱਡ ਗੁੱਡ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਫਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਫਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ।
3: ਚੋਲਾ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨੀਵੇਂ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਡੋਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ।

0: जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो।
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो।
3: सत श्री अकाल शुभ बोए बादशाह, ते तुसी सुन रहे हैं 1674 AM रेडियो। हां जी

0: यो हाँ जी 1674
1: कुछ गल्लां कहनियां नहीं पैंदियां, बस महसूस करनियां पैंदियां ने।
2: हाय नी, इन्ना सोहना मुंडा वी गूंगा है।
1: इस बार गल सिर्फ बोलन दी नहीं, दिल दी सुनन दी है।
3: मुंडे नु चाहिदी है सारी रात फोन ते गल्लां करन वाली कुड़ी, तू बोल नहीं सकदी, ओने नहीं आना तेरे पीछे।
1: लव इमोशंस अदे रिलेशनशिप्स दी कहानी। रिदम बॉयज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बोल पावे ना बोल, रिलीजिंग वर्ल्ड वाइड 4 सितंबर। रिटन एंड डायरेक्टेड बाय राकेश धवन। ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला, ना जाओ इधर उधर, सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर। अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक, हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02 9063 1618। हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406 660 960 दे या फिर विजिट करो बंसल इमीग्रेशन.com.in।

0: एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बोल पावे ना बोल
1: प्यार नु सुनन ली कन्ना दी नी दिल दी लोड़ हुंदी
0: कुछ गल्लां कहनियां नहीं पैंदियां बस महसूस करनियां पैंदियां ने
1: एहो गल्लां ते मैं हुणे अपनी जुबान वट के हो जाना
0: इस बार गल सिर्फ बोलन दी नहीं दिल दी सुनन दी है
2: जिंदगी किवें कटांगे मैं नहीं रह सकती ओदे बिना मैनू ओ चाहिदा
0: रिलीजिंग वर्ल्ड वाइड 4th सितंबर रिटन एंड डायरेक्टेड बाय राकेश धवन लव इमोशंस अदर रिलेशनशिप्स दी कहानी बोल पावे ना बोल